0: ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਸਟੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਾ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ, 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ते हैं केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में, और इसी रात प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज में दिखते हैं, वर्टिकल वीडियो लाते हैं, मित्रों नहीं फ्रेंड्स कहते हैं, सीधे छात्रों से संवाद बनाने की कोशिश करते हैं और एजुकेशन सिस्टम में कई तरह के सुधारों का वादा भी करते हैं। आधी रात को हुए दो बड़े डेवलपमेंट्स देखकर लगा कि जंतर मंतर पर मची रार शायद अब थम जाए, लेकिन जब 24 जुलाई का सूरज निकला तो पता चला कि अभी भी सब कुछ मध्य में है, यानी अधर में ही लटका हुआ है। सरकार वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरी तरह से अड़ी है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम है, इसलिए हम जिम्मेदारी से भागने का काम नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं होगा। सीजेपी और प्रदर्शनरत छात्र वो भी अधर में है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नो इस्तीफा नो टॉक की बातें कही हैं। 25 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक का टाइम बम टिक टिक कर रहा है और अगली मुलाकात इस्तीफे की डेडलाइन से 1.5 घंटे बाद की फिक्स हुई है। विपक्ष भी अधर में है, इस्तीफा तो वो भी मांग रहा, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना है या नहीं इसे लेकर एकमत नहीं। राहुल गांधी पैलेट गन विक्टिम को तो सामने लाते हैं, लेकिन जंतर मंतर जाने से अभी भी परहेज है, सपोर्ट है लेकिन दूर से है, और शंका भी है कि कहीं सोमवार को सरकार ने प्रश्नकाल से पहले ही ये नीट एग्जाम में या ओवरऑल जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर बिल ला दिया तो बहस में हिस्सा लेंगे या इस बात पर अड़े रहेंगे कि पहले प्रधान का इस्तीफा हो। और सबसे बड़ा अधर इस देश के एजुकेशन सिस्टम और उन करोड़ों छात्रों के भविष्य का है। प्रधानमंत्री का वीडियो वर्टिकल है लेकिन आंदोलन अब हॉरिजॉन्टल फैलकर मुंबई के शिवाजी पार्क से लेकर कोलकाता की सड़कों तक पहुंचा है। एक स्टूडेंट पर पड़ी लाठी का मतलब 4 वोट का नुकसान है, ये सियासी गलत भी समझाया जा रहा है। लोडिंग और अनलोडिंग की बातें की जा रही हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं घटनाक्रमों की बात करेंगे। सरकार और सीजेपी के बीच 24 जुलाई को क्या बात हुई, किन शर्तों पर बात आगे बढ़ी, कहां फंसी, जंतर मंतर पर अब क्या हो रहा है, और अगर 24 घंटे का अल्टीमेटम बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीता तो क्या होगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम और हमारे साथी आपको दिन भर की खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, जहां भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर। अब आगे की बात, शुरुआत करते हैं उस अधर से जिसमें सब कुछ अटका पड़ा है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद 24 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मोदी सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आए, सीजेपी की तरफ से पहुंचे प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास। बातचीत लंबी चली। बाहर आकर सीजेपी वालों ने बताया कि सरकार ने उनकी 3 में से 2 प्रमुख मांगे मान ली है। पहली, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और दूसरी, नीट पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी के चलते जिन छात्रों ने जान दी उनके परिवारों को मुआवजा देने पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। यहां तक तो सब ठीक था, पर बात आकर अटकी तीसरी और सबसे बड़ी मांग पर, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से तरह तरह के इनपुट आए। कभी कहा गया कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि सरकार के मुताबिक ये तो जिम्मेदारी से भागना होगा। फिर ये भी कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो आगे जाकर बदला जा सकता है। लेकिन सीजेपी वाले भी इस्तीफे पर अड़े हैं। अब जिद्दीप के आशुतोष रांका और सौरभ दास तीनों इस बात पर पूरी तरह एकजुट हैं कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के वो घर नहीं लौटेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद सीजेपी ने सरकार को एक खुला अल्टीमेटम भी दिया। साफ कहा कि अगर 25 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं को तोड़कर एक नया रूप लेगा।
2: रिक्वेस्ट मिलेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे है ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
1: सीजेपी वालों का यह भी कहना है कि आंदोलन जीत के करीब है, इस्तीफा लोड हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए सीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को भी ये बात याद दिलाई।
3: तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार।

0: non-negotiable. Number two, 1 crore का मुआवजा सारे families के लिए जिनके बच्चे इस नीट के broken, corrupt education system के वजह से आत्महत्या करके मर गए.
1: हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा. ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है.
2: और बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, एक नया सियासी गणित भी समझाया जा रहा है. कहा गया कि एक स्टूडेंट पर पड़ी लाठी का मतलब है 4 वोट का नुकसान. यानी अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटते तो इसका चुनावी नुकसान प्रधानमंत्री मोदी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बकौल सीजेपी करोड़ों छात्र तब सड़कों पर उतर आएंगे. और इसकी वानगी भी दिखाई गई. कुछ जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के सपोर्ट में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. मसलन मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में मीनाताई ठाकरे की मूर्ति के पास छात्र धरने पर बैठे. शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए. पुणे में सीजेपी का मार्च निकला. उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डोरना क्रॉसिंग पर सीजेपी के समर्थन में उतरे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. जम्मू में नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी हुई. मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी संख्या में छात्र धरने पर बैठे. भोपाल में भी मोर्चा खोला गया. यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर की मास्टर कैंटीन स्क्वायर और हिमाचल के धर्मशाला तक हर जगह एक ही मांग गूंज रही है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे. बात इस्तीफे की हो रही तो विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, पर वो भी अधर में लटका है. बाकी विपक्षी नेता जंतर मंतर पर नजर आ रहे, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां जाने को लेकर अभी भी दुविधा में है. हालांकि एक समानांतर आंदोलन तो चला ही रहे हैं. पहले उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर अलग अलग इवेंट किए, फिर प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया, फिर गांधी स्मृति पहुंचे और आज यानी 24 जुलाई को पैलेटगंज के एक विक्टिम को मीडिया के सामने लाए.
3: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना. ये देखिए, ये है पैलेट गन. इसको कहते हैं पैलेट गन. इसको कहते हैं पैलेट गन. ठीक है. और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है.
2: दर्शक याद रखें, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर हमने विस्तार से पैलेट गन के विक्टिम्स के बारे में बात की है. अगर आपको उसके बारे में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हैं जो हमने कल रिकॉर्ड किया था. इससे तर कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं. जानकारी ये भी है कि पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई जंतर मंतर वाले आंदोलन में एक कोना तलाश रही है. इधर जंतर मंतर के सवाल से इधर संसद में विपक्ष एकजुट नजर आया. लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग. कांग्रेस का साफ कहना, इस्तीफे तक सदन में पेपर लीक पर चर्चा नहीं होगी. बातचीत से इधर सरकार कुछ और भी करती नजर आई. मसलन 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ एक नए और सख्त ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई. ये बिल 2024 के द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट में संशोधन करेगा. यहाँ पुराने और प्रस्तावित संशोधनों में फर्क भी समझ लीजिए. पुराने कानून के तहत पेपर लीक करने वाले सामान्य दोषियों के लिए 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था. संगठित गिरोह के लिए सजा 5 से 10 साल और जुर्माना 1 करोड़ रुपए था. लेकिन अब नए ड्राफ्ट बिल के तहत न्यूनतम सजा ही 5 साल कर दी गई और अगर कोई संगठित गिरोह इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भुगतना होगा. इससे तर मोदी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान तो कर ही चुकी है. एक बात और, सरकार ने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए नरेश पाल गंगवार को नया एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया है. इन नरेश पाल गंगवार पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जाम भी लगे थे. इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ था जिसके मुताबिक जब गंगवार नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में तैनात थे तब उनकी पत्नी, माँ और बेटे को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्कीम के तहत खीरे की खेती के लिए करीब 1.16 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी दी गई थी. दिपकी ने एक पोस्ट के जरिए तंज भी कसा, बोले सरकार जवाबदेही की जगह करप्शन को रिवॉर्ड कर रही है, ये युवा छात्रों का अपमान है. तो कुल जमा बात यह है कि 24 जुलाई की रात भी जंतर मंतर पर वैसी ही भारी रहने वाली है जैसी पिछले कई दिनों से रही. सरकार ने अपनी तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट, 10 करोड़ के जुर्माने का दांव चल दिया है. वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है. सीजेपी का अल्टीमेटम जस का तस है. अब देखना है कि अगली बैठक में क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर सरकार की नो रेजिग्नेशन और सीजेपी के ओनली रेजिग्नेशन के बीच ये लड़ाई फिर से संसद के दरवाजे तक पहुंचेगी.

0: सोमवार को यह भी देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है यदि सरकार स्पीकर से और राज्यसभा के चेयरमैन से बात करके प्रश्नकाल के पहले ही इस बिल को टेबल करती है, तब वो क्या बहस में हिस्सा लेंगे या एक बार फिर से इस्तीफे की मांग पर अड़ेंगे और तब सत्ता पक्ष ये कहेगा कि बात नहीं कर रहे सदन के पटल पर। जाते जाते आपको दो खबरें और बता के जाता हूं। पहली, एक इस्तीफा तो हुआ है मंत्री का, नाम है रवनीत बिट्टू। रवनीत बिट्टू राज्यसभा का बाई इलेक्शन जीत कर आए थे, मूलतः पंजाब के नेता हैं, 2024 तक कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे। विस्तार से आप वीडियो देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के चैनल पर। दूसरी खबर, सदन, ये हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम संसद में चल रही कार्रवाई और पर्दे के पीछे चल रही पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सदन के आज के एपिसोड में हमने बात की है कि कांग्रेस का वो कौन सा सांसद है जिसने अमित शाह की और बीजेपी की मदद की।
1: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।

0: aquí me lleva las ganas de ver el libro de Sonlange, pues la ganas de ver el libro de Sonlange, yo pues aquí está, porque el programa de Monday, Tuesday, Thursday, Friday, ¿Sham no sabe por qué Sunday, coi te lea que panjo está exundio? Hay de programa que hay que hacer, uno ya está el galapa de Jenny, ni o ese galte de Jenny, alguien que vi, que cojera, o vega, jete US ni, que hay cantidad de 10% फिर तो टैरिफ लाता ते दोबारा तो जड़ी गलबात जड़ी फिर तो शुरू होगी उत्ते कुछ एक गलबात जड़ी यानी वो होर भी आ रही है इंडिया में संदेह खबर छोटी भी खबर करवा सकते हैं
1: लगातार बड़ा होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट दिल्ली के अलावा भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया है। लगातार तीसरी बार भारत में सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए शिक्षा और रोजगार पहले कार्यकाल से ही चुभने वाले मुद्दे रहे हैं। वर्तमान में जारी विरोध प्रदर्शनों की अहम वजह भले ही पेपर लीक रही हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने की मांग, नौकरी की चिंता, शिक्षा और भविष्य के अवसर सीमित होने का डर साल दर साल स्टूडेंट्स के लिए बढ़ता गया है। भारतीय रिजर्व बैंक शहरी ग्राहकों के दिलो दिमाग में चल रही बातों की थाह लेने के लिए हर दो महीने में एक सर्वे कराता है। इसे अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कहते हैं। इस सर्वे में भी इस डर को देखा जा सकता है। सर्वे के जरिए भारत का केंद्रीय बैंक शहरी परिवारों की अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई, आय और खर्च के आंकड़े जुटाता है। ये आंकड़े लोगों की असल सैलरी या नौकरी से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये बताते हैं कि नौकरी, सैलरी और खर्च को लेकर उनके विचार और उम्मीदें क्या हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नौकरियों के भविष्य को लेकर रिजर्व बैंक का ये सर्वे बताता है कि लोग भविष्य में नौकरियों के अवसरों को लेकर निराश हैं। हालांकि इसी सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लोग इससे ज्यादा निराश थे, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वो कोविड का दौर था और अनिश्चितता अपने चरम पर थी। रिजर्व बैंक का ये सर्वे ये भी दिखाता है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में भविष्य को लेकर आशावाद में कमी आई है। हालांकि फिर भी युवा अधिक उम्र के लोगों के मुकाबले ज्यादा आशावादी हैं। भारत में लंबे समय से पढ़ाई को अच्छे भविष्य के लिए एक निवेश की तरह देखा जाता रहा है। 2025 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के बहुत से भारतीय युवा अब भी नौकरियों में नहीं हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये युवा मानते हैं कि उच्च शिक्षा एक तरह के निवेश की तरह है जो उन्हें ज्यादा अच्छी नौकरियों तक ले जाएगी। ये स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं को अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन या स्थायी और अच्छी नौकरियों का जरिया मानते हैं। ऐसे में जब परीक्षाओं का सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो कई स्टूडेंट अपने निवेश को खतरे में देखते हैं। शायद यही भारत में कई बड़े शहरों में स्टूडेंट्स के सड़कों पर

0: ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ
1: ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि इस देश में सत्ता ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है व्यवस्था नहीं बदलती चेहरे बदलते हैं चरित्र नहीं बदलता मुखौटे बदलते हैं मन नहीं बदलता हम लोगों का चेहरा बदलते हैं वो अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम जनता तो बिचारी सीता है रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी
2: जाएगी वाह
1: और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव जनता तो बिचारी द्रौपदी है कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी
2: वाह
1: और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान जनता तो बिचारी लाश है हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी
2: वाह
1: मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो मैंने कहा मैं नहीं लड़ता बोले क्यों नहीं लड़ते मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है हम लोग तो प्यार से जीत मैं हरियाणा का हूं साहब हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो छोरा बोला ठीक अगले दिन बेटा है बाप ने पूछे क्या रिजल्ट है बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर इसे कहते हैं बाप की बात मानना
2: वाह
1: अच्छा हमारे बेटों पर हमें 100% विश्वास होता है
2: जी
1: हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं हमारे यहाँ कूटे जाते हैं किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा बोले यार क्या करूं कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस
2: वाह वाह
1: अच्छा मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो क्योंकि मेरे 50 बनाए थे ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिल्लाता रहता 45% लिया या 95 लिया था अमरीका भाग लेता 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमरीका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा जिंदगी में पैसा एक सुख था हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं हो एक कड़वा सत्य कह देता हूं अपने बेटे को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा बोले तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा मैंने कहा मेरे वाला होगा बोले कैसे होगा मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा
2: वाह
1: राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की आपको मैं तो कहता हूं उद्योगपतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया
2: वाह वाह वाह वाह

0: हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते
1: हैं। वाह वाह वाह,
0: अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक तो जिंदगी में मॉर्निंग वॉक मत करना, एक्सरसाइज मत करना, जिम मत जाना, जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी। रिसर्च वर्क है, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। आप जी सुनते ही मॉर्निंग वॉक करने निकल गए भाई।
1: वाह,
0: और देखो भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोग उससे ज्यादा नहीं ले सकते, मानते हो कि नहीं? मानते हो तो ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। मैं तो टिप्स ही देखता हूँ आपको। और देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई।
2: कुछ गल्ला बता जेड़िया वधिया हसांदे आ लोकां नूं नाल दी नाल ही, पति पत्नी दे चुटकले जेड़े हुंदे आ। सो आई होप तुसीं जाण तों पहलां भाव की प्रोग्राम खत्म करन तों पहलां थोड़ी जी गल तुहानूं सुणाई है ते वधिया पसंद कीती होई। वैसे दुनिया भर दी जदों खबरां सुणदे आ ते इदां लगदा वी सारी दुनिया जेड़ी है तबाह हो चली है। वैसे काफी लंबे समय तों इक चलदा आ रिहा जनौत की वी अज ही शुरू होया, ते कुछ ना कुछ नवीं नवीं गल्लां ते खबरां जिहड़ियां आंदियां रहिणियां इसे तरीके नाल चलदियां रहिणियां, चाहे वह ट्रेड वार की गल होवे ते चाहे वह इस तों इलावा होर वक्खरियां वक्खरियां इनफॉर्मेशन जिहड़ी उह सामने आंदी। हुण रेफरेंडम चल रहा, ते रेफरेंडम दे नाल नाल तुहानूं पता वी जिहड़े कई जिहड़े कनेडियन ने उह स्ट्रगल कर रहे ने। थोड़े दिन पहला एक डाटा आया सीगा वी 61% कनेडियन जिहड़े उन्होंने अपने चेंज कर लिया काफी सिस्टम खर्चे करन दा ते होर इस तरीके दी चीजां। इस तरीके नाल लोकी जिहड़े ने चाहे वह खान पीन दी चीजां होण चाहे दूसरे होण उहदे ते उन्होंने करना शुरू किया। इवन दो जिहड़ी साडी प्राइस जिहड़ा वह घट गया पहले दे मुकाबले, महंगाई घटी है 3.2 तो लैके 2.8 ओवरऑल जिहड़ी सीगी पे हो गई है कैनेडा वाइड, बट अलबर्टा जी कह लो जां कैनेडा च 3.7 तो 3.4 ते पहुंची है। ऑलरेडी आपां काफी महंगी महंगाई दे विच रहिंदे पए आ। सो इस करके इह टाइम जिहड़ा है काफी तेजी दे नाल वध रिहा ते अगे आ रिहा। सो मैनूं लगदा वी टाइम साडा वी खतम हुंदा जा रिहा, इहदे नाल ही अज दा प्रोग्राम इत्थे समाप्त करनी इजाजत दिओ जी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल। संडे नूं फिर मिलांगे 1 बजे तों लैके 5 बजे तक, मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 तों 8 ते संडे 1 तों 5 बजे तक। थैंक यू, गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल जी। थैंक्स।
3: The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: तो कैलगरी मूव होने का मन बना लिया है। उन्हां दे आउण तो पहला मेनू घर चाहिए।
1: मेरी कल ही गल हुई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ढिल्लों पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ।
0: जी हाँ, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम कर दे जग्गी ढिल्लों नाल एक बार जरूर गल बात करो। जग्गी ढिल्लों दा फोन नंबर है 403-616-2445
2: 4036162445। ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फिर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो, ताकि अगली वारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
5: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हत्थ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
6: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाई जा सकती ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।

0: जिंदरा मैल आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है।
1: ओ तू सारा टब्बर कट्ठा करी फिरदा।
2: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने कट्ठा करके दिता है। JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदिया ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दिया दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
4: The time is 9 p.m.
5: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते वी घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 तो 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 तो 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
2: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM
3: मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 7 to 8 PM संडेज 1 to 5 PM
2: विजिट sabrang.ca
1: पंजाब तो पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते सुनो हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
4: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM

0: एंड मैं पैरामेडिक हाँ बाय प्रोफेशन एट वाईवाईसी होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे हां जिदे विच असी सरकार नूं सिद्धा बिल करदे हां अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाईसी प्रोग्राम इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चन होण तुसीं सानूं फोन कर सकदे हां 8257600983 ते थैंक यू
1: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां ले पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
2: अपने घर का दूजा नाया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती
3: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ
2: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंगल
3: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंगल
2: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंगल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस
3: भरोसे रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868
2: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor
3: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868
1: ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਖੁਦ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696 ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 587-617-4696
4: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515 2935 19th Street, North East Calgary.
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222
5: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी अज दिन शुक्रवार जुलाई महीने की 24 तरीक सन 2026 ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ